दार होता है। संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान अवतार में मानव शरीर को प्रभावित करता है उसे प्रारब्ध कहा जाता है। यह फल प्राप्त करने के लिए परिपक्व है, इसे टाला नहीं जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। प्रारब्ध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संचित और क्रियामान। क्रियामान यानी कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम उसको चलायमान की स्थिति में करते हैं, जिसे योग की स्थिति में कहा जाता है योग क्रियावान। योग क्रियावान के साथ साथ आज हम प्रारब्ध को भी जानेंगे और पूर्व जन्म के कर्म को संचित करके वर्तमान जन्म के कर्म को क्रियावान यानी चलायवान संचित करना ही प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का शाब्दिक अर्थ जिस तरीके से आपने समझा, किसी भी वस्तु किसी भी कर्म को क्रियावान करना। अब कर्म में हम बहुत सारे ऐसे कर्म हम रोज करते हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, परिवार में बैठ कर के हम सभी का पालन पोषण करते हैं, यह सारे कर्म ही होते हैं। लेकिन वह कर्म जो हम अपने लिए करते हैं, जिसे आज हम योग दृष्टि से जानेंगे और यह जानेंगे कि आज हम प्रारब्ध को किस रूप में कर सकते हैं। मंडूक आसन को प्रारब्ध के रूप में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यह एक आसन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आपने सुना होगा कि प्रारब्ध को बहुत ज्यादा बताया गया है, बहुत ज्यादा विस्तार रूप से बताया जाता है। ठीक वैसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं आज प्रारब्ध मंडूक आसन। तो आइए हम सीधे चलते हैं आसन पर और मंडूक आसन की ओर, यानी कि मंडूक आसन हम सभी मिलकर के करने वाले हैं। तो आइए एक स्वच्छ वातावरण में हम साफ सुथरी एक चादर बिछा ले और मैट बिछा करके हम बैठ जाते हैं और साथ ही साथ मंडूक आसन की प्रक्रिया को करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मंडूक आसन कैसे किया जाता है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं मंडूक आसन, जो कि पेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप किसी समतल जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन हमने पहले भी आपको पूरी की पूरी एक सीरीज बताई है वज्रासन में बैठने के लिए। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर पंजों के साथ में ऊपर उठाएं और एक पलथी नुमा में हम बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखकर बैठें। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं। तीन मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। मंडूक आसन वैसे तो बहुत ही प्रभावी आसन है। यह आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसे आप रोजाना 10 से 15 मिनट जरूर कर सकते हैं, तो आपका इससे पेट बहुत ही अच्छे तरीके से पतला होने की स्थिति में आ जाएगा। लोग क्या कहते हैं, मतलब जैसे आजकल महिलाएं पुरुष हैं वो कहते हैं कि मेरा पेट निकल आया है, बहुत बार ये सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से यदि हम इस मंडूक आसन को करेंगे तो हमारा पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। आजकल लोगों के पेट पर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फैट चढ़ता है। इससे बड़ी वजह है कि आप सिटिंग जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से तोंद निकल आती है। वजन घटने के दौरान पूरे शरीर में फैट चला जाता है, लेकिन सबसे आखिर में फैट पेट पर ही कम होता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप योग का सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको हमेशा से योग में ही करते रहना है। आज हम आपको एक ऐसा साथ ही साथ योग कराएंगे जो कि पेट के लिए बहुत ही ज्यादा है, जिसका नाम हमने आपको बताई दिया है मंडूक आसन। इसे करने के लिए

पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मंडूक आसन को मेंढक आसन भी यानी फॉग पोज भी कहते हैं। मंडूक आसन करने से न सिर्फ पेट की मसल्स मजबूत होती है बल्कि इसे करने के से बेली फैट भी बहुत ही अच्छे से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं जो कि अभी पहली अवस्था में हमने आपको बताया। जो लोग पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं उनके लिए यह योगासन किसी वरदान से कम नहीं है। गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत पाने में मंडूक आसन आपकी मदद करेगा। इसके अलावा डायबिटीज के रोगों के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है। जानते हैं मंडूक करने का तरीका, तो आइए हम पुनः आपको मंडूक आसन करने का आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले किसी समतल जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं। मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। ऐसे झुकें कि नाभि पर ज्यादा से ज्यादा दबाव आए। अपना सिर और गर्दन सीधी रखें। कोशिश करें धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अब आराम से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र आप शुरू करें 3 से 5 बार कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें मंडूक आसन करने के लाभ, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा हो सकता है। मंडूक आसन करने से पेट की मसल्स पर यानी टोन होने के साथ साथ बेली फैट भी कम करने में मदद करता है। मंडूक आसन करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच से छुटकारा मिलता है। मंडूक आसन करने से डायबिटीज रोगियों को फायदा मिलता है। यह जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि मंडूक आसन कब नहीं करना चाहिए। यदि पेट संबंधी कोई गंभीर रोग हो तो यह आसन ना करें, आप इसे हटा सकते हैं। आसन करते वक्त ध्यान रखें कि दोनों हाथों की मुट्ठियां अच्छी तरह से नाभि के आसपास टिकी हों। तो ये है प्रारब्ध मंडूक आसन जो कि आज हमने किया। मंडूक आसन कितनी बार करना है आइए हम आपको बताते हैं। मंडूक आसन आप सवेरे भी कर सकते हैं और शाम को भी, यानी कि आप सुबह उठकर के भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी करें मंडूक आसन वह हमारे लिए उचित समय हो और 4 से 5 घंटे पहले ही हमने भोजन कर रखा हो। उसके बाद में आपको ये लगेगा कि इसका असर हमारे लिए इतना लाभदायक हो रहा है, इसलिए यह मंडूक आसन प्रारब्ध के साथ जोड़ा गया है। प्रारब्ध का अर्थ हमने अभी आपको बताया कि पुनः यानी पिछले जन्म का कोई कर्म, इसीलिए हमने आपको बताया कि प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए मंडूक आसन को हम कर सकते हैं। इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दूर होती हैं। मुख्यतः पेट से संबंधित समस्या दूर करने में यह बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। आसन को पूरा करने के बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करें कुछ इस तरह। तत्पश्चात आप आंखों पे और अपने चेहरे पे लगाएं और एक बार ओम की श्वास भरने और श्वास लें। उसके

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में हैं। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम सुचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिलकर के, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या तो या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें, यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन

0: रखने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी सुबह पीना है। 5 से 6 भीगे हुए बादाम, 1-2 भीगे हुए अखरोट और थोड़ी सी किशमिश, इसको आपको रात में ही भिगो के रख देना है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस डाइट को लेना शुरू कर दिया, यानी कि सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स और या सूखे मेवे को खाना शुरू कर दिया, जीवन भर जब तक आपकी आयु है तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आते हैं नाश्ते की ओर। दलिया, ओट्स, पोहा, मूंग दाल का चिल्ला और साथ में 1 गिलास दूध, दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। दोपहर में 2 से 3 रोटी यानी कि बहुत ही पतली और हल्की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद और 1 कटोरी दही अगर आपको नुकसान नहीं करती है तो। शाम को मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता आदि आप ले सकते हैं। शाम का समय है, 5 और 6 के पहले ही आपको ये ले लेना है। भुने चने या अंकुरित दाल। अब आती है रात की बात, यानी कि रात में हम खाना कैसा लें। रात में हमेशा से हल्का भोजन लेना चाहिए। पतली पतली 2 रोटियां अगर आप खा रहे हैं तो ठीक, वरना 1 रोटी और दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और सोने से आधा घंटा पहले जिन भी लोगों को लगता है कि वो दूध पीते हैं और उन्हें वो हजम हो जाता है तो दूध में चुटकी सी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्या खाएं जिससे हमें और पौष्टिक आहार मिल सके। दूध, दही, पनीर, तिल और अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी यानी कि 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पी जाना है। इन चीजों से आपको बचना है, जैसे जंक फ्रूट हो गया, तला भुना भोजन, अधिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स, लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुक कर काम करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वाइकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग और डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस डाइट प्लान और योगासन को आप अपनी जिंदगी में, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जरूर इसे अपनाएंगे, और उसके बाद में जब आपने अपनाना शुरू कर दिया तो चैट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान और योग करने से अगर आपको सर्वाइकल है और उसमें फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक करें योग, रहे निरोग।
1: हेलो दोस्तों, योग की पाठशाला में मैं योगा एक्सपर्ट समता फिर से आपके सामने रूबरू होने आई हूँ। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए प्राणायाम के बारे में, जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यह कैसे करते हैं और इसके लाभ, विधि और इससे होने वाली असावधानियाँ, हम सबके बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्राणायाम जीवन का एक रहस्य है। ये जीवन श्वासों की आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है, ये तो सभी को पता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक दोनों उत्पन्न होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रदूषण भरे माहौल से हमें होने वाली चिंता यह दिन ब दिन सताई जा रही है कि प्रदूषण हो रहा है, जिसका मेन कारण है वातावरण में हमें पेड़ पौधों की कमी बहुत मिल रही है, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारे श्वासों की गति अपना स्वाभाविक रूप यूं ही खो ही देती है, जिसके कारण प्राण वायु संकट काल में हमारा साथ नहीं दे पाती। ऐसे में प्राणायाम को सीख कर अपने जीवन का एक अंग बनाए, क्यों ना हम अंग ही बनाए और हम उसे अपने जीवन में इस तरह घोल दें जिस तरीके से हम सुबह अपनी नित्य क्रियाएं जिस तरीके से करते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद में हमें लंच हो चाहिए, हमें चाय की तलब होती है, हमें न्यूज़पेपर चाहिए और हमें भागम भागी हमें अपना जॉब भी चाहिए। फिर शाम को थके हारे आकर के हमें डिनर भी चाहिए और थोड़े बहुत टीवी में अपनी न्यूज़ देखते हुए आराम से एक चैन भरी नींद चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमने प्राणायाम की जगह पर वो तो खाली रह गई, वो तो हमने उसको पूरा किया ही नहीं। तो आइए सबसे पहले हम ये जाने कि प्राणायाम को किस जगह पर हमें अपने जीवन में फिट करना है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लें कि सुबह उठते ही जब हम अपनी नित्य क्रिया करने के बाद प्रदूषण भरे माहौल को, जैसे आज जब हम किसी एक मेट्रो सिटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमें आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें ये फॉग और ये धुआं हमेशा से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियां हो, हमेशा से हमें ये मिलता दूर दूर से ही हमें प्रतीत होने लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले जब हम अगर प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में लाएंगे तो हमें दिन ब दिन उसका लाभ और उसकी उसके होने वाली विशेषताएं दिन ब दिन हमारे शरीर में और हमारे जीवन में पूर्णता आने लगेगी। सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के बाद ही किसी दूसरे प्राणायाम करना चाहिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभु को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नाग

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्रों वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय तस्मय बकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ अगत्स गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिन्नाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यः पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवा यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसे इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको उसे रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोक कर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: शुक्र करो, क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है, माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव, अनादि जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती उन्हें? शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो पल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94509449999।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आज है फाइनली मंडे और तारीख है 24 अगस्त। तो चलिए भाई, तारीख और दिन को देखते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज का थॉट ऑफ द डे लेकर आया है आपके दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, शो शुरू हो जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इसी शो के दौरान करते हैं, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी मस्ती और काफ़ी ज़्यादा हैरानियाँ आप तक पहुंचा देते हैं। सो देर किस बात की, सीधे चलते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि आज का मंडे स्पेशल थॉट क्या है।
7: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस एक बहुत छोटी सी बात चाहिए। वो छोटी सी बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है उम्मीद और भरोसे से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए बताते हैं आज का थॉट क्या कह रहा है। दरअसल आज का थॉट कह रहा है कि हमारे मन को हर बार जवाब नहीं चाहिए, हमारे मन को हर बार जवाब नहीं चाहिए, कई बार उसे सिर्फ ये भरोसा चाहिए होता है कि सब ठीक है। जी हाँ, हमारे मन को हर बार कोई जवाब नहीं चाहिए होता है कि हर बार एक जवाब हम ढूंढें, बल्कि ये भरोसा चाहिए होता है कि सब ठीक है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे बहुत प्यारी बात कह रहा है, बहुत लाजवाब। हर बार हमारे मन को ये थोड़ी ना चाहिए कि इसका जवाब क्या है, ये क्या हो गया, ये ऐसे ये वैसे, बल्कि सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि इसको भरोसा चाहिए होता है कि सब ठीक है। एंड यस, हमने हमेशा कहा है कि भाई अपनी गारंटी आप खुद लेने वाले हैं, कोई नहीं लेने वाला है। और इसका सबसे बेहतरीन वानगी यही है कि हमें अपने पे भरोसा होना पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, सो अगर हमें खुद पर भरोसा है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें करना फिर आसान हो जाता है, क्योंकि हर बार आपके पास आंसर्स नहीं होते हैं। कई थॉट्स के ज़रिए आपने ये भी जाना है कि हर सवाल ही आपके लिए नहीं होता है, क्योंकि कुछ के जवाब तलाशने बेकार ही होते हैं। और जहाँ पर आपको ये लगता है कि अब चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, उसकी हर बार वजह नहीं मिल पाती है, बस इतना भरोसा काफ़ी रहता है कि हाँ सब ठीक है। और ये दूसरों से कहने की बात नहीं कि सब ठीक है, ये खुद से फील करने वाली बात है कि हाँ सब ठीक है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, कि आज का थॉट ऑफ द डे तो यही बता रहा है। और आपने भी फील किया होगा, जब बहुत सारे डर के बीच, डर का एक समंदर होता है, उस बीच जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, जब आप खुद से सोचने लगते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी हो जाती है और आप कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, यही तो हमें चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसी की कमी थी जो आपको परेशान कर रही थी, राइट? तो अब ये परेशानी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद पर बिलीफ है। सो मुझे लगता है कि भाई ये बिलीफ होना चाहिए, बहुत प्यारी सी चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत सी, उम्मीदों से भरी चीज़ है ये बिलीफ। सो ये बिलीफ होगा तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होती हैं और आगे बढ़ती हैं। फिलहाल आज का मंडे स्पेशल थॉट तो यही कह रहा है कि आप हर बार जो है वो जवाब नहीं देना होगा आपके मन को, अपने को, क्योंकि हर बार जवाब की ज़रूरत नहीं होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं और वो हम खुद ब खुद समझ ही लेते हैं। सो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हमें भरोसा भी चाहिए होता है, वो भी खुद से चाहिए होता है। बस सकता है वैसे तो हर कोई कह के जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल

अब फिलहाल वक्त है खूबसूरत से गाना का आपको सुनाने का, तो चलिए भाई ये सॉन्ग आप एंजॉय कीजिए, वापस से आते हैं और आने के बाद आपको ले चलते हैं बहुत सारी बातों के बीच में, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ है जो आपके लिए है 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो में, और आपको समझना भी है, आपको जाना भी है। तो फिलहाल एक बेहतरीन सा सॉन्ग एंजॉय करेंगे, वापस से आएंगे और देखेंगे क्या कुछ लिखा है आपने मॉर्निंग विशेज में और साथ ही साथ आज के थॉट को लेकर गया।

0: हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुझे आपसे जानना है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सवाल ये है कि देखिए, हर रोज़ जो है जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ हमारी फेवरेट आवाज़ें होती हैं, जैसे माँ की आवाज़ हो गई, पिताजी की आवाज़ हो गई, बहन की आवाज़ हो गई, वाइफ की हो गई, हस्बैंड की हो गई, बच्चे की हो गई, या हो सकता है अगर कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहाँ पे कोयल की भी आवाज़ें आपको मिलती हो या मुर्गे की बांग सुनाई पड़ती हो, बहुत अलग अलग आवाज़ें। लेकिन अगर हम बात थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये आपसे जानने की कोशिश करें कि भाई, अगर आपको हर सुबह उठते ही किसी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की आवाज़ में बोलने का ऑप्शन मिले, तो आप किसकी आवाज़ में बोलना चाहेंगे? यानी अगर आप सुबह उठे जागे और आपको ये पावर हो, ये ऑप्शन हो कि आप किसी ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप कंसीडर करते हैं, जिसको आप बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, आपका बहुत मन है कि भाई इनकी आवाज़ में हमें सुबह सुबह बोलने का मौका मिल जाए, तो वो कौन सी आवाज़ और कौन सी पर्सनैलिटी होने वाली है? चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। और फिलहाल अभी जो आपने पहले कमेंट्स किए हैं उसका जवाब हम आ करके आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप ट्यून कर चुके हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो जो लोग सुनते हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, वो ऑप्शन उनके पास होता है कि वो लाइव लिख देते हैं और वो हम तक पहुंच भी जाता है। सो क्या कुछ लिखा है चैट पर आप लोगों ने आकर के, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो पहला जो मैसेज आया इस शो में सबसे पहले वो अनूप जी का आया है। अनूप जी लिखते हैं, मुसीबतें एक आईने के समान होती हैं जिसमें साफ दिख जाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। वाह क्या बात है, एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी आपने, थैंक यू सो मच। आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी। खिलखिलाती सुबह, ताजगी से भरा सवेरा है, फूलों और बहारों ने आपके लिए रंग बिखेरा है। सुबह कह रही है जग जाओ, आपकी मुस्कुराहट के बिना सब अधूरा है। ओह क्या बात है, बहुत प्यारा मैसेज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ सविता जी ने लिखा है, सुप्रभात, आज 7 साल पूरा हो गया है हरखापुर में, कभी लगता है कुछ दिन बाकी है। वैसे आपको और आपके पति को, दोनों लोगों को आपके शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद सविता जी। और आप एक ऐसी हमारे फैमिली की मेंबर हैं जिनको सभी जानते हैं, और आपकी दिलचस्पी, आपका अंदाज़ हर किसी को भाता है। और आपको आज हम सभी लोगों की तरफ से इतनी सारी दुआएं हैं कि शायद आपको रखना भी सोचने को मजबूर हो जाए कि भाई इनको रखना कहाँ है। सो आपको और आपके हस्बैंड को आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद नव्या लिखती हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियों बेचा नहीं जा सकता और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत मस्त हूँ। और आपकी बात काफ़ी ज़्यादा गहरी लगी, मुझे लगता है इसके लिए अलग से वक्त निकाल करके सोचना पड़ेगा। सो इसके बाद लिखा है नव्या ने, किसी की दिल पर मत लीजिएगा, और जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा व्यवहार। क्या बात है। एंड इसके बाद जो है, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच कि पसंद आया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास, लिखते हैं, अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। अच्छे लोगों से रिश्ता रखिए, जीवन बेहतर रहेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इसके बाद अगर हम बताएं तो प्रीति जी का बहराइच से आया मैसेज, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। साथ में आपने आज के थॉट को लेकर लिखा है, ऑसम थॉट, सच में बेहतरीन आश्वासन चाहिए, ना कि हर बार एक जवाब, है ना। ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की देरी है, हमें लगता है आपको समझ में आ गया बिलाल। हमारे अनूप जी लिखते हैं, वाह सर क्या थॉट है, मज़ा आ गया, मंडे वाला सुपर डुपर हिट थॉट, हर बार मन को समझा लेना भी गलत है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है और नेगेटिविटी को भर देता है, इसलिए मन को मजबूत करते हुए वो सब और ये कहीं ना कहीं ऑफकोर्स कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें, जिसे करने से हमारा मन हार चुका है फिर लास्ट में मस्त और आप जबरदस्त, थैंक यू सो मच, लव यू टू। कितना प्यारा लगता है देखिए ना, और जब ये थॉट्स हम लोगों को पसंद आ जाते हैं या हमको समझ में आ जाते हैं, ऐसा लगता है मतलब लाइवली सा फील होने लगता है। थैंक यू सो मच दिल से अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, हमारे रेगुलर शो में बनी रहती हैं। फिलहाल आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। एंड अरविंद फ्रॉम मनकापुर मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग अरविंद, लिखते हैं, आरजे सर एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा प्लीज़, आपकी याद आए तो दिल क्या करे। मेरी याद आए तो आप डांस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गाना सुनने की क्या ज़रूरत है। ऑलराइट, सो आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है, विश्वास जितनी बड़ी बात नहीं, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच टू यू। और अच्छा लीजिए भाई, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैंने एक सवाल पूछा था आवाज़ वाला, फिलहाल सविता दुबे जी ने कहा मैं तो अदनान सर की आवाज़ में, अच्छा आशु जी ने भी लखनऊ से बोला अदनान सर की आवाज़ में, ऑल राइट। और दूसरा आपने बच्चों की, अरे वाह वेरी नाइस। और प्रीति जी बोलती हैं, हम तो अपने पापा की आवाज़ सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह यही कहते हैं कि बिटिया उठो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, क्योंकि तुम सब मेहनत के मतलब मेहनती फादर के बच्चे हो। वाओ क्या बात है। एंड अरविंद लिखते हैं कि अपना कौन है ये शब्दों से नहीं बल्कि फिक्र से पता चलता है, सुप्रभात, थैंक यू। एंड यस, हम लोगों को लगता है कि भैया हमारी सविता जी को ज़रा हम सब लोगों को अपने तरह से दुआएं देनी चाहिए, चैट बॉक्स पे भी।
आके बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि उनकी जो ऑफ कोर्स आज मैरिज एनिवर्सरी है उसको लेकर के ढेरों दुआएं सविता जी को, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जब भी कॉल इन प्रोग्राम में जुड़ती हैं सभी को भा जाती हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी लाइफ जो है बहुत सारी लर्निंग से भरी पड़ी है। यानी अगर उनके एक दिन को भी हम सुनते हैं तो हमको लगता है वाओ, ये तो हमको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुंडा FM से जुड़ने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और गीता श्रीवास्तव जी कहती हैं सर मुझे शाहरुख खान की आवाज़ में। ऑल राइट, एक कितनी बार सुनना चाहेंगे आप? ऑल राइट। एंड हमारे अनूप जी ने फादर को अपने याद किया है, वो अपनी फादर की आवाज़ में सुनना चाहेंगे क्योंकि गुड मॉर्निंग जगाने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा था जिसमें डांट के साथ प्यार भी था, है ना? बिल्कुल बेशक सही बात है, पेरेंट्स की जो आवाज़ आती है उस जैसा तो कुछ भी नहीं, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। चलिए इन्हीं प्यारी बातों के बीच में एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाते हैं जिसके बाद आप जो है एक फ्लो में जाने वाले हैं। अब आप सोचिए नहीं बल्कि फील करिए कि ये फ्लो आखिर इस सॉन्ग में कैसे मिल रहा है। चलिए हम सब इस नदी की धारा में बहते चलेंगे। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हाय, क्या सॉन्ग है भाई। और ये सॉन्ग तो सुन करके मज़ा ही आ जाता है। इस सॉन्ग को भी मिल करके एंजॉय करने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई। ऐसी दोस्तों की बातचीत के बीच में एक बात हुई कि यार ये लाइफ क्या है। क्योंकि लाइफ को देखने का नज़रिया हम सब का बहुत अलग अलग है। कोई लाइफ को कैसे देखता है, कोई लाइफ को कैसे देखता है। पर उसमें जो बात एक निकल के आई वो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। शायद लाइफ को देखने का नज़रिया आपका भी अपना एक है ना। हम बताते हैं कि हमारी बात में उसके बाद लास्ट में उस कॉन्वर्जेशन में उस बातचीत में आखिर क्या निकल के आया कि लाइफ क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

होता है ना जब दोस्त यार बैठे हों, दो चार लोग बैठे हों और आप लोग एक ऐसे मूड में हो जहाँ पे बड़ी गहरी बातें कर रहे हो, जहाँ लफाजियाँ ना चल रही हो, लाइफ को समझने और कहने की बातें चल रही हो। शायद कुछ लोग ऐसा हों जो डाउन फील कर रहे हों, कुछ ऐसे हों जो बहुत रिलैक्स्ड हों, उसमें ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं अक्सर कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। ये कॉन्वर्जेशन हमारे ग्रुप में भी चल रही थी और कहीं ना कहीं एक बात बड़ी अच्छी से निकल के आई, जो मुझे भी बाद में लगी, रियलाइज़ हुई और शायद हम सभी को रियलाइज़ हुई उस पूरे ग्रुप में। तो वो बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बात ही निकल के आई कि यार हम सब लोगों के पास वक्त बहुत नहीं है, हम सब लोगों के पास बहुत कम वक्त है। मरने से पहले और जीने के लिए बहुत सारी ऐसी माकूल और ख़ूबसूरत चीज़ें हैं और वजहें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं। जी हाँ, ख़त्म होने से पहले और जीने के लिए बहुत सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, हम ज़बरदस्ती अपने आप को उनसे दूर रखे हुए हैं। अब आप सोचेंगे ज़बरदस्ती कैसे भाई, क्योंकि हम अपने पुराने गड्ढों में जी रहे हैं, वहीं पड़े हुए हैं, वहीं जी रहे हैं, वहीं फंस के रह गए हैं, वही एंजाइटी, वही गिल्ट, वही फियर, यानी वही पछतावा, वही डर, ये सब अभी भी हमें घेरे हुए हैं, उसी गड्ढे में हम हैं। फिर क्या करना है, पढ़ना है यार, नई चीज़ों को पढ़ना है, जो मन में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है उसको लिखना है और ज़िंदगी को समझना है, दुनिया घूमना है, तरह तरह के नए नए लोगों से मिलना है, एक्सरसाइज करना है, डांस करना है, जिम जाना है, ताकि अपनी लाइफ को हम बैलेंस कर सके, बेहतर बना सके। क्योंकि जितनी भी हमने अपने ऊपर बाध्यताएं बना रखी है, ये सब लेकर कोई चिता पर नहीं जाना है। हर चीज़ की बाध्यता, इसकी बाध्यता, उसकी बाध्यता, कितनी सारी ऐसे हमने खुद से बैरिकेडिंग कर रखी है अपनी लाइफ में। ना हम मॉर्निंग में उठ पा रहे हैं, ना हम जिम जा रहे हैं, ना हम डांस क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, ना हम कुकिंग सीख पा रहे हैं, ना हम ट्रैवल कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, नयापन लेकर आती है, ये हमने क्यों आखिर छोड़ के रखा है, आखिर हम क्यों बचा रहे हैं और क्या बचा लेंगे, सवाल तो ये भी है। सो क्या करना है, शुरू कर देना है भाई साहब, शुरू कर देना है। रात होने से पहले उजाला हो जाइए और लाश हो जाने से पहले आकाश हो जाइए, ऐसा कहना था एक बंदे का। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ही माकूल और बड़ी ही खूबसूरत बात कही, क्योंकि ये सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, ये फैक्ट है कि हम सब के पास बहुत वक्त नहीं है, हम सब के पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उसी में हमको जीना है। लेकिन न जाने क्यों हम अपने पुराने गड्ढे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और न जाने क्यों हम कुछ नया क्यों नहीं कर रहे हैं। आज हम अपनी एज का हवाला क्यों दे रहे हैं, आज हम अपने हालात का हवाला क्यों दे रहे हैं, जबकि हमने ऐसे लोगों को देखा है जो न जाने कितनी बुरे बुरे हालात से बाहर निकले हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा न जाने कितनी कितनी बीमारियों में उन्होंने अपने को बेहतर करने की कोशिश की और वो बीमारी ही ख़त्म कर दी। ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे हम सोच भी नहीं सकते वो लोगों ने कर दिया। जब इतनी बड़ी बातें हो सकती हैं तो इतनी छोटी सी बातें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ कहना, कभी कभी बच्चों जैसा फील करना क्यों नहीं हम करते हैं। आखिर ये लाइफ हर रोज़ हर लम्हा गुजर ही तो रही है, वो दिन तो कभी नहीं आया ना कि सब बेहतर होगा और हम उस चीज़ को शुरू कर देंगे। वो दिन आज है, आज का मंडे, आज की 24 अगस्त 2026 की तारीख और 9:48 पर हो रही है बातचीत, ये लाइफ को चेंज करने वाली है। जी हाँ, एंड मुबारक हो कि आप इसका हिस्सा हैं, डेफिनेटली ये लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमको अब निकलना होगा अपनी उन सभी चीज़ों से जिसमें हम फंसे रह गए। ऐसी कॉन्वर्जेशन हमारी हुई, मुझे लगता है शायद ये कॉन्वर्जेशन आपको बता करके, मुझे नहीं पता है कि मैं उन चीज़ों को बता पा रहा हूँ जो मैंने खुद फील किया था, लेकिन हाँ एक कोशिश ज़रूर मैंने की है इस बात को समझने की कि भाई ज़िंदगी में क्या है। ये कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी को अलग अलग पता है कि क्या है क्या है क्या है। अगर आपको ये नहीं पता ज़िंदगी क्या है, तो आपको ये बस पता करना है कि आपको खुशी कैसे मिल रही है, आप बेहतर कैसे फील करें और आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं बन पाए हैं ज़िंदगी क्या है, तो इतने ज़्यादा आप खुद के लिए सेल्फ लवर तो बन सकते हैं ना,
कि बस इतना ही जाने कि हाँ आपको खुशियाँ कैसे मिल रही है, आप क्या करके अच्छा फील कर रहे हैं और आप कैसे अपनों को खुश कर पा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। फिलहाल ये तो हमारी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा था। अब आपको कैसा लगता है या क्या आप मानते हैं, क्या समझते हैं, ये तो खैर मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद ही सोचिएगा। लेकिन मुझे सच में लगता है लाइफ बहुत छोटी है और करने को बहुत कुछ है।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

सो भाई आपको नहीं लगता है कि यार अब सिटी की अपडेट भी लेनी चाहिए और जाना चाहिए कि अपने शहर गोंडा में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? क्यों? क्योंकि हमको बहुत कुछ फिर ऐसी जानकारियां मिल जाती है जो हम जान के उसके बाद उन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ ये सही है। तो चलिए भाई आपको आखिर ले चलते हैं ऐसी अपडेट्स की तरफ, यानी सिटी अपडेट की तरफ, जिसमें आप काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, यानी आपके अपने गोंडा शहर में क्या कुछ चल रहा है ये आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक बेहतरीन सॉन्ग का मज़ा यानी कि टेस्ट, उसके बाद वापस आते हैं और आने के बाद आपको ले चलते हैं आपकी सिटी अपडेट गोंडा शहर के अपडेट्स की तरफ।

0: सो भाई, जो हमने वादा किया था कि आपको आने के बाद ले चलने वाले हैं सिटी के अपडेट की तरफ, ऑफ कोर्स हम ले चल रहे हैं आपको सिटी की अपडेट्स की तरफ। उसके बाद हम आएंगे, कुछ और मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स पर, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके गोंडा शहर में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

सो पहली जो अपडेट है वो ये है कि आज खुले रहेंगे बिजली विभाग के काउंटर्स। जी हाँ, सो त्योहारों को देखते हुए देवीपाटन क्षेत्र के जो मुख्य अभियंता हैं यदुनाथ यथार्थ ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं और 23 अगस्त को यानी कल संडे को छुट्टी के बावजूद बिजली विभाग के राजस्व काउंटर खुले रहेंगे और वसूली कैंप भी बताया गया लगाया जाएगा जो कि खुला भी रहा। एंड यस, इसके साथ ही साथ आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि बारिश से राहत तो मिली है लेकिन कई जगह कटान की खबरें अब ज़्यादा आ रही है, यानी कहीं ना कहीं जैसे सरयू का जलस्तर जो है वो घटते शुरू तो हो गया है लेकिन कटान भी अब यहीं से शुरू हो गई है। सो ये एक कंसर्न वाली बात है क्योंकि लगातार जो भी सीमावर्ती गांव हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम साफ देखी जा रही है, ये प्रॉब्लम साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। सो अगली अपडेट में हम बता दें, मंडल में रोज़ाना जो हैं वो 58 ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है 867 क्षतिग्रस्त हुए हैं, 529 ओवरलोडिंग से फूके हैं। जी हाँ, सो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़िलहाल आ रही है। गोंडा में हम बताएं 381 ट्रांसफार्मर्स और श्रावस्ती में 209, बहराइच में 187 मामले जो हैं वो फ़िलहाल सामने आए हैं ट्रांसफार्मर्स फूकने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें, नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो मेधावियों को जो स्टडी टेबल दी गई है उससे जुड़ी हुई आ रही है और प्राथमिक विद्यालय दुबई में ग्राम पंचायत सचिव उमरलेंद्र विक्रम तिवारी, प्रशासक सुक्रू शर्मा और पंकज सिंह की मौजूदगी में क्लास 3rd, 4th, 5th के 3 जो मेधावी स्टूडेंट्स थे उनको स्टडी टेबल दी गई है और कहीं ना कहीं स्टडी टेबल देकर के उनको सम्मानित किया गया है ताकि उनके हौसले को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि ओ लेवल बैच में भी कंप्यूटर विषय पर सेमिनार का आयोजन शहर में किया गया जिससे कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की जानकारी और बदलते डिजिटल युग के बारे में जानकारियां हासिल हो सकें। एंड 7,300 रसोइयों और उनके परिवार वालों को मिलेगा कैशलेस इलाज। जी हाँ, सो पीएम पोषण योजना के तहत ज़िले के जो परिषदीय विद्यालय में तैनात 7,300 रसोइयां हैं उनके परिजनों को अब कैशलेस इलाज की फैसिलिटी मिलेगी और कल ही ज़िले में आयोजित समारोह में रसोइयों को मुफ्त चिकित्सा कार्ड जो है वो वितरित भी किए गए यानी बांटे गए। इसके लिए शासन के लेवल से 3 लाख रुपए के बजट भी जारी किया गया। सो मुख्य कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया और इसके साथ ही सभी तहसील मुख्यालयों में भी कार्यक्रम होने की बात बताई गई है। सो समारोहों के दौरान रसोइयों के मुख्यमंत्री के संबोधन का बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। सो इसके अलावा आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी मांगे गए हैं सुझाव। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण की तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगे हैं। सुझाव माई गव पोर्टल पर चल रही सार्वजनिक जो परामर्श प्रक्रिया है उसके जरिए दिए जा सकते हैं। सो मिलने वाले सुझावों के बेस पर मिशन के अगले चरण का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसको लेकर के बताया गया है। सो फिलहाल ये अपडेट थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 2609 स्कूल्स में फैसिलिटीज़ पर की जाएंगी उसकी हकीकत। जी हाँ, यानी पेयजल, शौचालय, बिजली और मिड डे मील तक की जांच होने की बात बताई गई है। ज़िले के 2609 परिषदीय स्कूल्स की जो व्यवस्थाएँ उसको परखने के लिए निरीक्षण की योजना तैयार की गई है। सो जिला और विकास खंड लेवल पर अधिकारियों की निगरानी में टीमें के जरिए स्कूल्स में साफ सफाई, पढ़ने पढ़ाने का, स्टूडेंट्स को मिल रही फैसिलिटीज़ की ज़मीनी हकीकत देखी जाने की बात कही गई है। सो फिलहाल बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि ज़िले में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय स्कूल्स में अवेलेबल 29 बिंदुओं की सुविधाओं की जाँच की जाएगी। इसमें शुद्ध पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय, हाथ धोने के लिए व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, रसोई घर, बिजली कनेक्शन, विद्युत उपकरण की क्रियाशीलता शामिल रहेगी। इन सभी चीज़ों को चेक करने की बात फिलहाल सामने आ रही है।
इसके अलावा आपको हम बता दें कि 21 दिन में 3 बालिकाओं की मौत और उनके कारणों की जांच शुरू की गई है। परसा गुंडरी ग्राम पंचायत में 21 दिन के अंदर कथित तौर पर बुखार से पीड़ित 3 बालिकाओं की मौत का मामला फिलहाल सामने आया और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से अभी गांव के सभी मजरों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच करने की और बीमारी की वजह का पता लगाने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में टीम भेज करके जांच फिलहाल शुरू कर दी है। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारियां थी जिसके बाद हमने आपको बताया कि भाई किस तरह से गोंडा से ये अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैंने आप तक पहुँचा दिया। आई होप कि आपको सिटी की अपडेट में काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। सो फिलहाल आगे बढ़ेंगे और एक बेहतरीन सा सॉन्ग आपका इंतज़ार कर रहा है काफ़ी वक्त से, और अब ये आपके हवाले हम कर रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आप इसको सुनिए और इससे मिलने वाले आनंद को फील कीजिए।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो फिलहाल अबली की जो अपडेट आ रही है वो दरअसल स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर जिसे बोलेंगे इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुले जाने को लेकर के अपडेट है। मुझे लगता है कि भाई उन स्टूडेंट्स के लिए, उन मेधावियों के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या अपना करियर बनाने का स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, उनके लिए इस सेंटर को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ये सेंटर? खेलो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने का जो प्रोसेस है उसने जोर पकड़ लिया है। इसके अंडर प्रदेश के जो चुनिंदा 30-30 हॉकी और एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं उनको हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। सो साई की तरफ से देश भर में 29 खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। इसके अंडर में उत्तर प्रदेश का सेंटर लखनऊ में खोला जाएगा। सो 2 साल तक चलने वाली इस योजना के लिए साई की ओर से कुल 2,68,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अंडर सेंटर के लिए तैनात होने वाले स्टाफ पर 1,40,00,000 रुपए और नए उपकरणों के लिए 1,28,00,000 रुपए जो हैं वो

किए जाएंगे। अगले 3 महीने में सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश भर में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सिलेक्शन करके उन्हें उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल दीपेंद्र यादव ने बताया कि कॉलेज प्रांगण में स्थापित होने वाले खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इससे प्रदेश भर के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों के अलावा एथलीट्स का पुल उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाएगा। इस सेंटर के खुलने से स्पोर्ट्स कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का बेहतर मौका मिलेगा, जो उनके परफॉर्मेंस में सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए विभाग की तरफ से प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर जैसे बाकी स्टाफ्स की भी नियुक्ति की जाएगी। सेलेक्ट हुए खिलाड़ियों को बेहतर माहौल अवेलेबल कराने के लिए ट्रेनिंग के लिए नए उपकरण और उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर खेलों की ट्रेनिंग का बेहतर बनाने के लिए नया मल्टीपर्पज़ हॉल खोले जाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। बीते दिनों खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के निर्देशन में हुई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए मसौदा तैयार किया गया। मिली जानकारी के हिसाब से 60 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा इस हॉल की कुल लागत तकरीबन 22 करोड़ होगी। हॉल में इंडोर खेलों का आयोजन के साथ ही 1200 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल ये जो सेंटर खोला जा रहा है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको लेकर के बात ही और चूँकि ये स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ख़ास है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई इससे बढ़ावा दिए जाने की कहीं ना कहीं कवायद की जा रही है। और जैसे जैसे इंडिया में खेल का कल्चर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी हम बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है कि यार फिट रखने के लिए, वर्कआउट के लिए ये गेम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अच्छी बात है कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपने को लगा रहे हैं या जितना मौका मिल रहा है उसको हम करके दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा है। चलिए, तो अच्छी बात है। फिलहाल आपका क्या है मानना, आप भी बता सकते हैं, सोच सकते हैं और कह सकते हैं। फिलहाल आपको हम ले चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला जो गाना आ रहा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप ट्यून कर चुके हैं 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, जो कि अब आपको मिलने वाले हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल बने रहिए गोंडा FM 89.6 FM के गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: हेलो, क्या कर रहे हो जानू?
1: पैसा जोड़ रहा हूँ।
0: पैसा? ओहो, तुम कितने अच्छे हो। पता है मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी थी, ढेर सारी ज्वेलरी खरीदनी थी। अब दोनों काम बहुत आसानी से हो पाएंगे।
1: चल पगली, 10 का नोट फट गया था, वही जोड़ रहा हूँ।
2: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कई बार कुछ कुछ ऐसी दीवानगी होती है जिससे पूरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। सुनने में इतनी छोटी सी बात, लेकिन जब उसका रीज़न बनता है तो इतना बड़ा कैसे बन जाता है। हालांकि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती और ना ही कोई एक पक्ष जिम्मेदार होता है। एक ऐसी घटना जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया और साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सुन करके हैरानी होती है कि एक आईफोन के चलते पूरा परिवार उजड़ गया। माँ बाप और बेटे की मौत हो गई एक आईफोन के चलते। अब आप सोचेंगे ये कैसे, आइए बताते हैं पूरी जानकारी आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

सो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के छात्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक घटना हुई और एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। अब मृतकों की जो पहचान है वो झालटा फाटा इलाके के रहने वाले 48 साल के मुरलीधर चांदगुड़े, उनकी वाइफ संगीता और उनके 19 साल के बेटे कुणाल, इन तीनों की मौत हुई। लेकिन इसके पीछे की जो वजह सामने आई वो सच में आपको चौंका देगी। दरअसल ये पूरा परिवार का जो विवाद था वो एक आईफोन को लेकर के शुरू हुआ। 19 साल के बेटे की एक आईफोन की चाहत और उसके बाद कैसे ये परिवार ख़त्म हो गया ये बताते हैं। दरअसल जांच में सामने आया कि 19 साल के कुणाल ने हाल ही में एक आईफोन ख़रीदा था और उसकी ईएमआई भरने के लिए परिवार से पैसे मांग रहा था। इसी बात को लेकर के फादर के साथ में पेमेंट को लेकर के उसकी तीखी बहस हो गई थी। सो फादर की डांट से नाराज़ कुणाल घर से बाहर निकल गया और वो सुबह करीब 10 बजे वालुज MIDC पुलिस थाना क्षेत्र के तिसगांव में मौजूद एक पहाड़ी पर जाके चढ़ गया। फिर क्या था, 3 घंटे तक समझाते रहे लोग। कुणाल के पहाड़ी पर जाने के बाद, जानकारी मिलने के बाद, उसके फादर, उसके मम्मी, वह सब वहाँ पहुँच गए और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ मिलकर उन्होंने करीब 3 घंटे तक उसे समझाने को और सुरक्षित नीचे उतरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। दोपहर करीब 1 बजे कुणाल के पिता उस जगह तक पहुंचे जहां उनका बेटा खड़ा था। उन्होंने उसे किनारे से खींचकर वापस लाने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और वो पहाड़ी से नीचे खाई में जाकर गिरे। अपने पति और बेटे को गिरता देख कर संगीता भी कुछ देर बाद पहाड़ी से नीचे कूद गई और हादसे में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, सो फिलहाल ये वीडियो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड किया है और इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब बात सुनने में ऐसा लगेगा कि अच्छा, 19 साल का कुणाल था, टीन एजर था, आईफोन की चाहत होगी, इस युवा पीढ़ी को न जाने क्या हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी। पेरेंट्स जाहिर है बेहतर ही सोचते हैं हमेशा, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बच्चों को तब ज़्यादा डांटते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनको हम एक तरह की आदत डाल चुके होते हैं। शुरुआत से ये चीज़ें शुरू होती हैं। जब हम बच्चों के रोने पर कोई भी सामान लाकर दे देते हैं तो बच्चों को पता होता है कि ज़िद करने से सब कुछ मिल जाने वाला है, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, कुछ भी हो, बस ज़िद कर दिया, मिल गया। लेकिन अगर हम इस बात के लिए समझ पाएँ कि पेरेंटिंग में दरअसल बच्चे के रोने से उसको नहीं दिया जाता, बल्कि उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है और उस पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती बचपन से कि बेटा ये चीज़ है, अब तुम्हें डिसीजन लेना है, और ज़िद पर तो कभी नहीं, ताकि बच्चे को ये पता हो कि हाँ, मिलने लायक होगा तो ज़रूर मिलेगा और नहीं होगा तो फिर नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। काउंसलर्स बताते हैं, साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि भाई ऐसे वक्त पे जब आप बच्चों को डील कर रहे हों, स्पेशली टीनेजर बच्चों को, तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसा एज होता है, एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें बच्चे कुछ भी कर गुजरने को रेडी होते हैं। तो ऐसे फेज़ में, ऐसी एज में इस बात का हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनको डील कैसे करना है। लेकिन इसका सीधा असर पड़ता है शुरुआत से की गई पेरेंटिंग पर, यानी शुरुआत से आपने बच्चे को डील कैसे किया है, कैसा उसको बनाया है और उसको क्या सीख दी है कि भाई वो अपनी चीज़ों को कैसे पा सकता है, मेहनत करके। अगर कोई बुरा वक्त आया है तो वो क्या खुद झेलने के लिए तैयार है, या फिर अभी तक आप सिर्फ ढाल बनते आए हैं और बच्चे पर आए अचानक से मुसीबत उसको तोड़ देती है। इसलिए शुरुआत से ही बच्चों को खुद से चीज़ों को मैनेज करना, खुद से अपनी चीज़ों का फैसला लेना सिखाना होता है। सो मैंने कहा ना कि किसी भी घटना के पीछे सिर्फ एक वजह है जो दिखती है, उस एक वजह के पीछे उसको बनने की हज़ार वजहें होती है। तो ना जाने कौन कौन सी वजहें हैं, लेकिन एक बात जो साफ है कि जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एंटर करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि हर आने वाली जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन होती है और उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो नेक्स्ट होती ही है। कहीं ना कहीं जो पहले की जनरेशन होती है उसको इस बात की समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसको डील कैसे करना है।
आपको मैनेज कैसे करना, आपको कंट्रोल नहीं करना, आपको किसी को रोकना नहीं है, बल्कि आपको इतनी ताकत और इतनी सोच उसके अंदर डेवलप कर देनी है कि वो अपना अच्छा बुरा और अपने डिसीजंस खुद से ले सके और ऐसे कोई कदम ना उठाए जो फिलहाल इस परिवार के साथ हुआ। आई होप कि इस बात को आप भी जान रहे हैं और इसीलिए हम बीच बीच में पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ बातें, एक्सपर्ट्स की बताई हुई कुछ बातें आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं ताकि हमको ये पता चलता रहे कि व्हाट इज़ राइट पेरेंटिंग, सही पेरेंटिंग क्या है और कैसे की जा सकती है और उसका असर क्या होता है और कितना होता है। और हम हमेशा ऐसे पेरेंटिंग की बातें भी आपसे हम साझा ज़रूर करते रहेंगे।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: हाँ जी, वापस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। अब वक्त है आपके आए हुए चैट बॉक्स पर मैसेजेस पढ़ने का।
2: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अतन।

चूंकि आज सविता जी की मैरिज एनिवर्सरी है और साथ ही साथ हमने कहा भी था कि आप लोग अपनी दुआएं अपने आशीर्वाद से नवाजते रहिए, और लिखा भी है अरविंद ने, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। एंड इसके बाद जो है ऑफ कोर्स कई सारी और विशेज मिली हैं। आशु जी ने बोला है, सविता जी आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, माता रानी आप दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। गीता श्रीवास्तव जी ने भी बोला, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर रिंकी कॉलिंग नेम, भोलेनाथ बाबा की कृपा आप दोनों पर बनी रहे, और अपना नाम जी गीता और राइट सुजीत जी आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और आशु जी ने लिखा, सर जी दोस्त और अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। बेशक सही कहा आपने। और सविता दुबे जी लिखती हैं, सुख दुख आते जाते रहेगा, छोटी छोटी खुशियां लूट ले और मस्ती करो बस। सही बात है, बेशक सही फरमाया आपने, क्या बात है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र जी लिखते हैं, खुशियाँ वही होती है जो व्यक्ति अपने सर पर सब्र का ताज रखता है और दूसरों की निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति सबसे खुश इंसान है। वाओ, थैंक यू। गुमनाम का है, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड यस, आई होप कि भाई आज का शो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया और काफ़ी ज़्यादा आपने इन्जॉय किया है, आप लोगों को सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। थैंक यू सो मच टू एवरी वन। और अब फिलहाल वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज का शो कैसा रहा हमको ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ बने रहिए अपने गोंडा एफएम 89.6 एफएम पर। आरजे अदनान ले रहे हैं इजाज़त, लेकिन आपको बने रहना है रेडियो गाना 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: हरे रंग का सूट, हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग का दुपट्टा। अरे वाह, ये देखिए श्वेता जी की फोटो इंस्टा पर, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे श्वेता जी, कहाँ की है ये फोटो?
6: अरे सावन शुरू हो रहा है ना, ये अपने भैया भाभी के साथ पृथ्वीनाथ मंदिर गई है, वहीं की फोटो डाली है। सावन में ग्रीन कलर का बहुत महत्व है।
7: अब पूरी एक महीने रौनक लगेगी, बहुत सारे फेस्टिवल जो आने वाले हैं, जैसे नाग पंचमी, राखी, कजरी तीज, जन्माष्टमी। चलो किरण दीदी से जानते हैं सावन के बारे में।
5: अरे रुको रुको, हमारे बिना ही सारी मस्ती। लो सब लोग पहले प्रसाद खा लो, पृथ्वीनाथ मंदिर का। जानते हो, वहाँ तो अभी से सावन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, दुकानें भी लगने लगी हैं। संतोष भैया, आप भी प्रसाद ले लो।
8: श्वेता मैम, आप पृथ्वीनाथ धाम गई थी ना, उससे 1 किलोमीटर पर ही हमारा गाँव सुसगवा है।
5: फिर तो हम लोगों को भी ले चलिए संतोष भैया। किरण दीदी, आप बताती भी रहिएगा कि सावन में भगवान शंकर की क्यों इतनी पूजा होती है।
7: किरण दी, आप ढेर सारे लोकगीत तैयार कर लीजिए, क्योंकि सावन के बारे में सारी बातें एक एपिसोड में तो पूरी नहीं हो पाएंगी।
6: सही कह रही हो समता, हमने कमर कस ली है, ढेर सारे गीत तैयार हैं, और एक अच्छी बात ये है कि बाबा को जल चढ़ाकर सावन की शुरुआत कर रहे हैं।
5: संतोष भैया, कल खाना आपके यहाँ खाएंगे, सुबह 6 बजे हम लोग निकल लेंगे, सब टाइम पर आ जाना।
8: ये रहा सभी के पूजा के लिए सामान, आप सभी लोग एक काम करिए, जल चढ़ा दीजिए, पंडित जी भी वहीं पर हैं और वो सबकी पूजा भी करवा देंगे।
6: बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आओ सब मिलकर भोलेनाथ बाबा का भजन कर लें।

0: ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में हर वर्ष भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखना।
1: चलो अब संतोष भैया के घर चलते हैं। पर जब हम लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बहुत सारी रंग बिरंगी दुकानें दिख रही थी।
2: हाँ समता दी, हमें चूड़ियां और बिंदी लेनी है। कल जब आए थे तब भैया को देर हो रही थी, तब दर्शन के बाद तुरंत चले गए थे और कुछ भी नहीं ले पाए थे।
3: हमें भी हरे रंग की चूड़ियां लेनी है। सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। कहते हैं कि हरे रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए और काले और नीले रंग के कपड़े सावन में बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए।
0: ऐसा क्यों? हरे रंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? मम्मी भी टोकती हैं कि काले कपड़े मत पहनो। अरे ये स्टॉल कितना सुंदर है, ग्रीन कलर का ले लेते हैं, जब पहन कर जाएंगे तो मम्मी खुश हो जाएंगी।
3: चलो सब, संतोष के घर से कितने फोन आ गए हैं। सब लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। देखो रास्ते में कितनी हरियाली है। बरसात के बाद सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।

0: आपने गीत गुनगुनाया और कितना प्यारा सा मौसम हो गया। देखो देखो अपनी सोशल मीडिया क्वीन श्वेता रानी को तो रील बनाने में ही बिजी है, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है।
1: अरे रील नहीं बना रहे थे हम, तो सिमी का आंसर ढूंढ रहे थे कि हरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सावन का महीना प्रकृति से जुड़ा है और हरा प्रकृति का रंग है, साथ में चारों तरफ हरियाली होती है।
2: हरा रंग सौभाग्य का रंग होता है और भोलेनाथ बाबा को हरा रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए महिलाएं हरे रंग की साड़ी चूड़ी पहनती हैं। मेहंदी का रंग भी तो हरा होता है, इसीलिए उसे लगाना सावन में शुभ होता है।
3: आइए सबसे पहले आप लोग को हम काली माई थान पर ले चलते हैं, वहाँ बहुत बड़ा झूला लगता है और गांव की काफी सारी औरतें आती हैं झूलने के लिए।
1: अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। संतोष भैया अपनी वाइफ नीतू को भी वहीं बुला लीजिए।
3: काफी सारे लोग पहले से ही वहाँ पर हैं। एक तो सबको पता भी चल गया था कि किरण दीदी आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं।
0: आपके कारण हम लोगों का कितना स्वागत होता है दीदी, कितना बड़ा झूला है, कितनी ऊंची पैंग मार रही है, 8 लेडीज बैठी हैं, कहीं टूट न जाए।
1: हम भी पैंग मारेंगे, देखो सब झूले पर बैठकर गाना गा रही हैं। नीतू भी है, सब कितनी सुंदर लग रही हैं।
2: नमस्ते नमस्ते, हम लोग झूले पर बैठ सकते हैं? अरे नीतू तुम तो ढोलक के साथ झूले पर बैठी हो, बजा लोगी झूलते हुए? चलो सिम्मी और श्वेता तुम लोग पेंग मारो, समता आओ हम लोग नीतू के साथ बैठते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

So, दोस्तों इंतजार का सिलसिला जारी रहेगा। पहला इंतजार तो दिल का था, लेकिन दूसरा इंतजार होता है हमारे दिमाग का, सफलता और सही वक्त का इंतजार। हम में से 90% लोग जिंदगी भर एक झूठी, बहुत ही झूठी उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं कि एक दिन मेरा वक्त आएगा, तब मैं भी ये करूंगा और जब सही मौका मिलेगा तब शुरुआत करूंगा। किसी शायर ने बड़े सलीके से कहा था कि वक्त के परिंदे को उड़ते देखा है मैंने, इंतजार की छांव में अक्सर लोगों को ढलते देखा है मैंने। अरे भाई, आज 24 अगस्त निकल रहा है, साल के 8 महीने बीत गए हैं, वो परफेक्ट टाइम आसमान से कोई फरिश्ता लेकर नहीं आएगा। सही वक्त आता नहीं है और जो वक्त अभी आपकी मुट्ठी में है उसी को सही बनाना पड़ता है। सबर का फल हाथ पर हाथ रखकर बैठने और तकदीर को कोसने से नहीं मिलेगा। सबर का मतलब होता है अपना काम करते रहना और नतीजे का इंतजार शांति से करते रहना। और अगर आप भी इस मंडे की बहुत ही खूबसूरत सी शाम में, रात में अपने सपनों का इंतजार कर रहे हैं, तो उठिए, आज से ही एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। गोंडा के शहर और दुनिया भर के लोग, गोंडा, बहराइच, बस्ती, मुंबई, श्रावस्ती, जहां से भी मेरे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलें अपने आप को और अपने आप को, जैसे हमारा पूरा शहर विकसित हो रहा है वैसा ही अपने आप को विकसित करें। सो दोस्तों, इंतजार को बदलिए अपनी मेहनत में, इंतजार को बदलिए अपनी मेहनत में, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, चाहे जितना इंतजार करेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दोस्तों, हमने इंतजार के कितने रंग देखे हैं जानते हैं? सबने कोई ना कोई इंतजार का रंग जरूर देखा होगा, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी के वजह से। सो वक्त आ गया है आज के इस इंतजार के सफर को यही विराम देने का। आज हमने इंतजार के कितने रंग देखे, मोहब्बत का इंतजार, मैसेजेस का इंतजार, सफलता का इंतजार और दिन के खत्म होने का इंतजार। लेकिन ये इंतजार ही है जो अंदर से अंदर खोखला करता रहता है। सो इंतजार को अपने अंदर पनपने मत दीजिए, इंतजार करिए लेकिन एक हद तक करिए। इंतजार उसका करिए जो जिससे आपको इतनी एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तो वो वापस आएगा, वो चीज़ मुझे मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं, आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा ना थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप हमेशा, मैंने ये देखा है दोस्तों कि इंसान को ज़िंदगी में अगर बहुत अच्छी चीज़ कोई चाहिए होती है, तो अगर उसका कोई गोल होता है, उसको कुछ अचीव करना होता है, तो उसके पहले मैंने देखा है कि लोगों ने पहले कुछ उतना ही अजीज चीज़ खोया है, उस चीज को खोने के बाद में फिर उसको मिला है वो चीज, है ना। तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है आपका अपना गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गुंडा मैसेज मसाला में भी मुझे आना होगा। मेरे लिसनर्स मेरा यहाँ भी इंतजार करते रहते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू बैक टू टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, वेलकम इन योर शो, स्टे ट्यून्ड। कार्तिक कश्यप और अरविंद मनकापुर से निधि कश्यप, उत्कर्ष कश्यप गुमनाम, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, नवीन राजपूत जी एमपी से, के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, नाजिया अंसारी, और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से। चलिए इंजॉय करते हैं हम एक बहुत ही प्यारी सी दिल को धड़का देने वाली बातें, जस्ट बातें सुनना ही है, आनंद ही लेना है, दिल से मत लगाना। जो आपको लगे कि आपके दिल के लिए हेल्दी है वही दिल के लिए लगाना, दिल से लगाना। जो लगे कि आपके दिल के लिए अनहेल्दी है प्लीज उधर जाने की कोशिश भी मत करना, ट्राई भी करना। मैं बात कर रही थी इंतजार की ना दोस्तों। इंतजार उस दिए की तरह है जो तेज हवाओं में भी जलने की जिद करता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन किसी की राह तकते हुए गुजारे गए वो तन्हा लम्हे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब उम्मीद आखिरी सांस गिन रही होती है तब भी दिल का एक कोना बस यही कहता है कि बहुत चाहा मगर हमने तुम्हें पुकारा नहीं, बहुत चाहा मगर तुम्हें हमने पुकारा नहीं, तेरे बगैर भी तो जी लेंगे पर ये गवारा नहीं, तेरा इंतजार आज भी है और कल भी रहेगा, ये और बात है कि अब हमें तेरा सहारा नहीं। गुलजार जी की ये लाइंस थी। और दोस्तों कुछ इंतजार कभी खत्म होने के लिए नहीं बल्कि किसी को उम्र भर शिद्दत से याद रखने के लिए होते हैं। वक्त ठहरता नहीं पर किसी के इंतजार में गुजारा हुआ हर एक पल सदियों जैसा भारी लगने लगता है। ये इंतजार ही तो है जो साबित करता है कि मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं बल्कि दूर रहकर भी वफा निभाने का हुनर है। जैसे बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जरा सा मुड़ के देख लो हमें जाते हुए साहब, न जाने फिर कब तुम्हारा और हमारा सामना हो जाए। बशीर बद्र जी का ये कहना था। और इंतजार अगर सच्चा हो तो दूरी कभी भी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती बल्कि उसे और गहरा बना देती है। हर आहट पर चौंक जाना और हर बार दरवाजे की तरफ देखना, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी का इंतजार अपनी रूह से किया हो। दिल आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पर तुम छोड़ गए थे, लेकिन जॉन एलिया के अल्फाज इस तन्हाई को बयां करते हैं। बहुत नजदीक आती जा रही हो बिछड़ जाने का इरादा कर लिया क्या, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा तुमने आने में देर कर दी क्या। सो ये लाइंस थी जॉन एलिया की। इंतजार जब हद से आगे बढ़ जाता है तो इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, बस एक खामोश मुस्कान के साथ जीना सीख लेता है। ये तो मानना है आपकी अपनी आरजे सिंपल का और हमारे कुछ पुराने शायर का। आपका क्या कहना है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना। फिलहाल फरमाइशी की महफिल का वक्त हो चुका है, सो गोंडा मैसेज मसाला को यहीं करते हैं स्टॉप और मिलते हैं कल फिर से आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला में। तैयार रहिएगा आप सभी, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। ये है आपका गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम और चलिए चलते हैं फरमाइशी की तरफ। जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, गुमनाम शशि सिंह जी गोंडा से, अनिल वर्मा सैदापुर से,

मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा मीन्स जग्गू दादा जी एमपी से, विजय पाल यादव जी ललोहा लखीमपुर खीरी से आपका भी स्वागत है, केके गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, अनुष्का श्रावस्ती से, सोनिया तिवारी गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, नवीन राजपूत जी एमपी से आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ में नवीन राजपूत का कहना है कि इंतजार की आरजू अब खो गई, खामोशियों की आदत हो गई, ना शिकवा रहा ना शिकायत किसी से, अगर है तो एक मोहब्बत जो इन तन्हाइयों से हो गई। वह बहुत खूब। इसी के साथ में कहना है धर्मेश त्रिपाठी का, टूट गया दिल तो बवाल क्या करें। अच्छा, टूट गया दिल तो बवाल क्या करें, जब छोड़ गया वो इंसान तो उसका मलाल क्या करें, और भगवान करे ढेर सारी खुशियां हो उसकी जिंदगी में, ताकि फिर मुड़कर मेरी तलाश ना करें। सो दोस्तों, चलते हैं अपने फरमाइशी गीतों को एंजॉय करिएगा। चलने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी और आप लोग का पहला फरमाइशी गीत भी प्ले करना चाहूंगी। पहली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, उनको सुनना है गाना मेघा रे मेघा। तो एंजॉय करते हैं ये प्यासा सावन पिक्चर का बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी आपके गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेती हूँ अलविदा, बाय बाय।

तेरी याद साथ है जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। तो अब चलते हैं भाई प्रीति शुक्ला जी जो हमको सुनते हैं बहराइच से, और बरसात में जब आएगा सावन का महीना जी हाँ, तो बरसात भी थोड़ी बहुत हो चुकी है और सावन का महीना चल रहा है, आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है।

जी हाँ, क्या मौसम आया है, ये फरमाइश हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल भाई बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, बरसात में जब आएगा सावन का महीना, और उधर इधर हुआ कि बरसात में, उधर लगेगा कि ये क्या मौसम आया है। जी हाँ, श्री के गुप्ता जी जो हमको सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही प्यारे श्रोता, फरमाइश है बरसात में जब आएगा सावन का महीना के बाद गीत है क्या मौसम आया है। वास्तव में मौसम बहुत शानदार है।

जी हाँ, वास्तव में बहुत ही प्यारा और सुहाना मौसम आया है, बस थोड़ी सी बरसात की कमी है। जी हाँ, अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता श्री विजय पाल यादव जी और फरमाइश है। भाई लगता है चीनी को देखकर उन्होंने फरमाइश की है कि महंगाई मार गई। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान का ये प्यारा सा गीत मनोज कुमार, जो अपने आप में सुपरस्टार हैं, और एक और मनोज कुमार हैं, वो भी सुपरस्टार हैं। आइए इन दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ देखते हुए गाना बजाते हैं, महंगाई मार गई।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा।

जी हाँ बिल्कुल, महंगाई मार गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर महंगाई का कोई असर नहीं होता। जैसे अगर कोई दान है तो उसके ऊपर महंगाई का असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए श्री राजेश सिंह जी जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से, गीत भेजा है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। जी हाँ, मैं हूँ दान, दान। देखिए दान आ चुके हैं और अब महंगाई

0: ऐसा है कौन अरे दीवानों।
1: जी हाँ बिल्कुल पहचान लिया गया है कि डांस है। चलते हैं भाई अपने निब्बल भाई तरफ। दुनिया में एक ही भाई है निब्बल भाई, और बरसात ने इनको भी परेशान किया है, गीत भेजा है वो मेरे सजन बरसात में आ लिया। जी हाँ लीजिए निब्बल भाई के सजन बरसात में धीरे धीरे आ रहे हैं।

0: लगातार।
1: मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 trillion की है और 2047 तक इसके $30 trillion तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
4: We have free trade agreements or preferential market access.
5: भारत को $70 trillion की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
0: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
7: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, बहुत ही पैसा खूबसूरत सा ये गीत तो हमने एंजॉय किया श्री अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं रेणु तिवारी जी की तरफ और उनको सुनना है गीत शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। और वास्तव में इंसान दुनिया से लड़ता है लेकिन फिलहाल अपने नसीब से, अपनी तकदीर से आकर हार जाता है। ज़िंदगी को सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करता हुआ ये प्यारा गीत आप सभी का कर रहा है इंतज़ार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, और बढ़ते हैं। वास्तव में शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। और इसके बाद अब चलते हैं उद्दालक शर्मा जी की तरफ। और जब इंसान मिल जाए और कहीं खो जाए तो कहना चाहिए आ अब लौट चलें। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत श्री उद्दालक जी की फरमाइश पर आप ये नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा।

जी हाँ बिल्कुल, लाभ लौट चले और ऐसी स्थिति में कभी ना कभी लौटना ही पड़ता है। और बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना भाई, और इसके पश्चात चलते हैं अब धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ। और इनके दिल की ख्वाहिश थी, कुछ आरजू थी जो मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन इस गीत के माध्यम से मुकम्मल करते हैं, पूरी करते हैं आपकी ख्वाहिश को। जी हाँ, दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा मिले। फिल्म का नाम निकाह, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में किशोर कुमार जी के साथ ये प्यारा सा गीत आप सभी कीजिए इंजॉय, सुनते रहिए। और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ख्म के बिना इंसान को लगता है ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। प्यार में मुश्किलें मिले तो घबराना कैसा, सुना है दर्द से चाहत जवान होती है। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं मनकापुर की तरफ। और अरविंद जी हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता हैं और गीत उन्होंने भेजा है, बहुत ही प्यारा सा गीत, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। स्वर्ग फिल्म का ये गीत है और मोहम्मद अज़ीज़ की प्यारी सी आवाज़ में ये गाना है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये गीत भाई, आपकी फरमाइश करते हैं पूरी, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा।

0: जी हाँ, दर्द की पराकाष्ठा को छूता हुआ ये प्यारा सा गीत मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, और एक्टिंग बाकमाल भाई, भारतवर्ष के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना। और जी हाँ, आप चलते हैं अपने दर्द कुमार और सुरेश कुमार की तरफ। फिल्म का नाम जब जब फूल खिले, पर्दे पर हैं जी शशि कपूर और आवाज़ कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी की है। यहाँ मैं अजनबी हूँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, आइए सुनते हैं सुरेश कुमार जी की प्यारी सी फरमाइश पर।
1: ले देखा पहले

0: तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल

उचित उपचार डायरिया से बचें हर बार। स्टाफ डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, जिसमें हम बात करते हैं दानिश्वरों की, जिसमें हम बात करते हैं कलमकारों की, जिसमें हम बात करते हैं नींव के उन ईंटों की जो हमको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिनके ऊपर साहित्य और समाज ये दोनों टिका होता है। ऐसे कलमकारों को आपके बीच लेकर आते हैं और आज जिस कलमकार को आपके बीच लेकर आए हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। आप में से सभी लोग उनको जानते होंगे। उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नाम नहीं सुना हमने, संपूर्ण सिंह कालरा कौन है? जी हाँ, इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और उपनाम आप सभी के दिलों में बसा है। जी हाँ, उन्हें हम गुलजार साहब के नाम से जानते हैं और वास्तव में उनकी शायरी में, उनकी गज़लों में उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें गुलजार क्यों कहा जाता है। जन्म होता है 18 अगस्त 1934 को दीना, यानी अब पाकिस्तान में है, और एक सिख परिवार में जन्म होता है। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो इनका परिवार दिल्ली आ गया और इस विभाजन का दर्द अपने, मैंने देखे हैं ऐसे लेखक ऐसे कवि जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को देखा है, उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं वो दर्द साफ साफ महसूस होता है। हम मनोहर राणा की बात करें, हम गुलजार साहब की बात करें, हम अमृता प्रीतम की बात करें, मतलब जिन लोगों ने उस विभीषिका को देखा, उनकी कलम जब चली तो फिर लगा कि हाँ, वो जॉन एहलिया की बात करें हम, ये जो तकता रहता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो अब क्या होता है कि मुंबई में आते हैं और फिर मोटर गैराज में काम करने लगते हैं और इसके पश्चात चले जाते हैं मुंबई, तब उसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, अब तो मुंबई है। और काम था वो पेंटिंग करने का, काम उन्होंने चुना, उनको वही काम मिला वहां पर विदेश में। तो इंसान जो चाहे वो नहीं कर सकता, वो तो जो मिलता है चलो जीविकोपार्जन के लिए वो सब करना पड़ता है। और उनके पिताजी चाहते थे कि वो कोई एक नियमित ढंग से काम करें, क्योंकि वो लेख वगैरह लिखते थे, गजलें लिखते थे, गीत लिखते थे। तो उन्होंने काम किया, संपूर्ण सिंह कालरा का नाम छोड़ा और अपना नाम रख लिया गुलजार। जी हाँ, इनके बारे में और सी बहुत सी बातें आपको बताएंगे।

और आखिर में वो समय आ गया जब वो एक पंक्ति है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर ही कुछ कारीगर करता है। तो इंसान को पहले अपने आप को थोड़ा सा योग्य बनाना पड़ता है। और वेल देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। और बिमल राय और एसडी वर्मन से उनकी मुलाकात होती है, वो उनके हुनर को पहचानते हैं। और पहली फिल्म जिसके गीत उन्होंने लिखे, उनका नाम था बंदिनी। और कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काफी संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है, लेकिन बंदिनी के लिए उन्होंने गीत लिखा, पहला गाना लिखा, मोरा गोरा अंग लैले मुहे श्याम रंग दई दे। यहीं से ही वो पहला गीत था। आपने शायद इस नगमे को सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको ये सुनाऊँ। और यहीं से फिर उसके पश्चात क्या पूछना था, फिर तो जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हर दम औकात से बड़े थे, सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, पर बावजूद उसके हम देर तक लड़े थे, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। संपूर्ण सिंह कालरा को शायद ही कोई जानता हो, लेकिन गुलजार साहब को हर वो इंसान जानता है जो गजल जानता है, गीत जानता है, कविताएं जानता है। जी हाँ, आइए आपको ले चलते हैं भाई। अब अरविंद जी हमारे साथ हैं। नाजिया अंसारी जी हैं, आदाब अर्ज मनुसर जी हाँ, आपको भी आदाब। और हमारे साथ अरविंद जी हैं, जी हाँ शुभ संध्या आपको भी। अरविंद जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ। और क्या बात है, सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और नव्या जी भी आ चुके हैं भाई, गुड इवनिंग जी, शुभ संध्या आपको भी। और जी और अरविंद फ्राम मनकापुर, कुछ नहीं मैसेज पूरा रीड, अच्छा अच्छा ये बात है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। और क्यों ना, अगर हमने गुलजार साहब की बात की है तो आपको वो पहला नगमा गुलजार साहब का सुनाने के बाद तब गज़ल की तरफ चलते हैं, गुलजार साहब की लिखी हुई गज़लों की तरफ। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म बंदनी का वो प्यारा सा नगमा जो गुलजार साहब का पहला नगमा था। सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को

सोचिए, दुनिया जो है वो गौर वर्ण की दीवानी है, गोरा रंग, और नूतन साहब जी पर्दे पर हैं और कहती हैं कि गोरा अंग ले लीजिए और श्याम रंग दे दीजिए। एक कलमकार जब लिखता है तो फिर उसकी जिंदगी का दर्द झलकता है। कितनी खूबसूरती के साथ श्याम रंग को अच्छा कहा गया। और वैसे भी कहा जाता है, सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सब रंग कच्चा, संवरिया रंग पक्का। मतलब सांवले रंग का बड़ा महत्व है, और ये बात बंदनी फिल्म में गुलजार साहब ने बताई। जी हाँ, गुलजार साहब ने लिखा कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। मतलब गम को बहुत ही प्यार से रखा गया है, हिफाजत करते हैं गम की, क्योंकि वही तो आधार है उनकी लेखनी का। आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। अब शब्द सुनिएगा, पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देखिए, जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगे होंगे, उस पेड़ को उतना ज्यादा पत्थर सहना पड़ेगा। कुदरत का अजीब सा नियम है। जिस पर कम होते हैं फल, उन पर लोग पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन जहां जानते हैं इस पेड़ पर फल ज्यादा है, तो उस पर पत्थर पड़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी विनम्रता है, वो दूसरों के लिए बड़े काम की चीज बन जाती है, वो आपको यूज कर सकते हैं। पका हुआ फल देखा और पत्थर उछाल दिया। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। जी हाँ, और इनके द्वारा लिखी गई कई सारी गजलें, बहुत सारी गजलें वो गाई। जगजीत सिंह साहब से इनकी बहुत अच्छी मुलाकात रही, और उनकी एक एल्बम आई थी मरासिम, जगजीत सिंह साहब की, और उन्होंने उस एल्बम में गीत गाया था, गजल गाई थी, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं गुलजार साहब के द्वारा लिखी गई ये गजल, और मखमली आवाज़ यानी जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गजल को आपको सुनाते हैं। लिखी है संपूर सिंह कालराव गुलजार ने, गाई है जगजीत सिंह साहब ने। सुनते रहिए ये प्यारी सी गजल।

जी हाँ, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है। फिल्म थी ये इजाजत, और इस गजल को स्वर दिए थे आशा भोसले जी ने। जी हाँ, तो हमने आपको एक गजल सुनाई जो जगजीत सिंह साहब ने गाई, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते। दूसरी गजल जो आपने अभी सुनी, ये भी गुलजार साहब ने ही लिखी थी और आवाज़ दी थी इसको आशा भोसले ने। फिल्म का नाम इजाजत, बहुत ही प्यारी मूवी है। कभी आपको मगर समय मिले तो अवश्य देखिए। आगे लिखते हैं वो कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, अफसाना मतलब कहानी। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं। बालिश्ता समझते होंगे कि हाथ से जब आप कोई चीज नापते हैं तो उसको एक बालिश्त कहा जाता है। शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी होती है, तो आप कहिएगा इंतजार की। किसी व्यक्ति का आपको कोई बोले कि बस 5 मिनट में आ रहे हैं, तो आप सड़क पर खड़े होकर अगर 5 मिनट उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये 5 मिनट कितना ज़्यादा होता है। और वो व्यक्ति वहाँ पर आ जाए और आप उनसे बात कीजिए, तो आधे घंटे का समय पता नहीं चलता। इंतज़ार की घड़ियाँ वास्तव में बहुत लंबी हो।

तो कहते हैं कि शाम जब आई है तो उसको एक एक करके से एक एक पल लगा कि एक एक युगों के समान बीतता है। रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, धूप पुरे लो थोड़ी सी पैमाने में, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, अरे दर्द मजे लेता है जो दोहराने में, दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, अरे किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कवि ने कहा कि अब यहाँ से छोड़कर अगले मोड़ पर चलते हैं, लगता है उनको बहुत समय लगेगा। जी हाँ, तो गजल आपने सुनी गुलजार साहब की लिखी हुई, वो गाई जगजीत सिंह साहब ने। दूसरी गजल जो आपने सुनी वो गाई आशा भोसले ने। अच्छा, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कहीं पर भी रहे लेकिन लता जी ना आए? जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने वो भी गजल सुनी होगी, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, वो भी गुलजार साहब की ही लिखी हुई गजल है। और अब आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, फिल्म का नाम है घर और आवाज दी है इसे लता मंगेशकर जी के साथ किशोर कुमार ने। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल गुलजार साहब की लिखी हुई। आह, और आवाज की तो बात ही क्या करें, आशा भोसले हो चुकी हैं तो लता मंगेशकर भाई बड़ी बहन है, बिल्कुल गाएंगी गुलजार साहब की लिखी हुई गजलें।

कितनी सही बात कही थी और कितनी वो बात आज तक भी तर्कसंगत है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है दरियादे। और वास्तव में लता जी की आवाज ही उनकी पहचान बन गई। क्या लिखा गुलजार साहब ने इस गजल को भी लिखने वाले गुलजार साहब। फिल्म का नाम किनारा, जितेंद्र और हेमा मालिनी पर्दे पर है, और बहुत ही प्यारी सी ये गजल। अच्छा, शायर ने कहा कि दर्द हल्का है, सांस भारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। रात को चांदनी तो ओढ़ा दो, रात को चांदनी तो ओढ़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है। शाख पर कोई कह कहा तो खिले, शाख पर कोई कह कहा तो खिले, कैसी चुपसी चमन पे तारी है। कल का हर वाकिया तुम्हारा था, वाकिया मतलब कहानी, समय, वक्त। कल का हर वाकिया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। जी हाँ मनुष्य जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई धर्मेंद्र मोहन जी आपको। और जी नहीं, अरे मैं तो स्वयं आपकी बहुत कदर करता हूँ। और अब भाई सबने गा दिया, लेकिन गजल का एक और नाम, बहुत प्यारा नाम, भूपेंद्र सिंह। उनकी एक गजल तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, सबने सुनी होगी मैं जानता हूं। लेकिन एक गजल भूपेंद्र सिंह ने गाई थी, गुलजार साहब की लिखी हुई, वो गजल आपको सुनाते हैं। जी हाँ, सविता लिखती हैं, मैं इसे फरमाइश करने वाली थी। क्या बात है, देख इसे कहा जाता है कि दिल को दिल से राह होती है। मेरी माता जी की बहुत पसंदीदा मिठाई है मिल्क केक, और पता नहीं क्या मेरे उनके बीच संबंध है कि उनके मन में उधर खाने की इच्छा होती है और इधर से जब मैं जाता हूँ तो गाड़ी के ब्रेक अपने आप रुक जाते हैं, तो ले लेता हूँ। तो मम्मी कहती हैं मैं

0: मैं सोच ही रही थी कि आज मिलके खाने का मन कर रहा है, और ऐसा कई बार हुआ। तो मैंने देखा है कि अगर आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपकी वाइब्स मिलती हैं, आपकी विचारधाराएं मिलती हैं, यहाँ से हम सोच रहे हैं और वहाँ तक वो बात पहुँच जाती है। ये प्रेम के रिश्ते होते हैं। हमारी मासमान भाभी सविता जी, और उन्होंने कहा कि मैं इसकी फरमाइश करने वाली थी, और तब तक मैंने गुलजार साहब की ये गज़ल बजा दी, नाम गुम जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको लगा कि आप हमको हृदय से मानती हैं जी। आइए अब चलते हैं, आपको सुनाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गज़ल, और अब की बार पर्दे पर कौन होगा? अब की बार पर्दे पर होंगे जया बच्चन के साथ संजीव कुमार, और गाएगा कौन? जी हाँ, गजल बहुत प्यारी सी है, बीती ना बिताई रहना, भूपेंद्र सिंह के साथ जी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आइए आपको सुनाते हैं गुलजार साहब की लिखी हुई एक प्यारी सी गजल, और भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: लेटेस्ट अपडेट्स

0: जी हाँ, ऑप्शन मत लेने का वक्त आ चुका है। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि ऑप्शन मत लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल 8 बजे फरमाइशी गीत आपके नाम से और उसके पश्चात बाहर ये गज़ल में 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबके
1: साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी घरौंदा। तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। रोहन इतनी जोर से चिल्लाया।

की रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी आभा के हाथ से बर्तन गिर गए। जाहिल औरत, किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। कहने को एमए पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गवार। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो, बात करने तक का सलीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने 10 साल पुराने दोस्त विक्रम से किस तरह रूठे हुए हो ये सोचा है कभी? वो 6 बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते हैं रिश्ते, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए बोली। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं था जब रोहन ने झगड़ा ना किया हो। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये भाषण देना बंद करो। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ रोहन, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा अकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करके तो तुम हर किसी को अपने से दूर कर लोगे। इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मुझे सीख मत दो। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़बड़ाते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आभा सकते में आ गई। क्या कह गया था रोहन? वो 2 सालों से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रोहन के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और वो रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन रोहन था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती तो वो भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर वो कहना क्या चाहता था? आभा कुछ देर तक खड़ी सोचती रही, और फिर उसने निर्णय करने में पल भर की भी देर नहीं की।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है घरौंदा। अब तक आपने सुना, रोहन हर वक्त आभा के ऊपर चिल्लाता रहता था। उसे हर बात से, हर किसी से हमेशा शिकायत ही रहती थी। 2 साल हो गए थे उनकी शादी को। आभा बहुत समझाने की कोशिश करती पर सब नाकाम। और उस दिन तो हद हो गई जब रोहन ने उसे कह दिया कि वो जाना चाहे तो वो भी उसे छोड़कर जा सकती है। पानी सिर के ऊपर हो चुका था। आभा को निर्णय लेना ही पड़ा। अब आगे, रोहन ऑफिस से फिल्म देखने चला गया, फिर रात को देर से घर लौटा तो घर उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देख उसे झल्लाट हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, मेरे आने से पहले ही सो गई, कम से कम बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। अपनी आदत के अनुसार अजय बड़बड़ाया। फिर काफी देर तक कॉल बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। आभा घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा बिखरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आभा उसके आने के समय घर पर ना हो। तो क्या आभा सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर को उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया। जाती है तो जाए, मैं उसके नखरे तो उठाने से रहा, अपने आप 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। वो बड़बड़ाया और उस रात भूखा ही सो गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, पर आभा नहीं लौटी। ना ही रोहन ने उसे बुलाने की कोशिश की। इस बीच उसने विक्रम को कई बार फोन किया, पर उसने बिना बताए फोन ही काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहयोगी से जब उसने विक्रम के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वो मुस्कुराया और अपनी सीट पर जा बैठा। जब दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो वो बोला, हमारे रोहन को ये नहीं पता कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बारगी हटाना आसान है, पर अगर पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना, हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। आभा के जाने के बाद शुरू शुरू में तो रोहन को अपनी आजादी बहुत अच्छी लगी। जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता। लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का बनाना और अकेले बैठे टीवी देखते रहना। हाँ, भाभा तो थी नहीं जिस पर वो अपनी झुंझलाहट उतारता, इसलिए काम वाली पर ही अपनी खीज उतारता। कभी उसके देर से आने पर तो कभी घर ठीक से साफ ना करने पर। काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन ये कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे आदमी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। और फिर रोहन का वो सहारा भी चला गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है घरौंदा। अब तक आपने सुना, रोहन बहुत ही तुनक मिजाज था, अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं करता था और अपनी पत्नी को तो हर वक्त बेवजह उल्टा सीधा बोलता रहता था। और एक दिन उसकी पत्नी आभा उसे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे उसे उसकी कमी का एहसास होने लगा और फिर एक दिन उसके चिल्लाने की आदत से तंग आकर उसकी कामवाली ने भी उसका काम छोड़ दिया। अब आगे क्या करता रोहन? उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन वो जितना भी सामान लाता था वो सब कम पड़ने लगा। आज ये नहीं है, वो नहीं है कहकर वो रोहन की जान खाए रहता। उसके पड़ोसी उसे एक दो बार चेतावनी भी दे चुके थे कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वालों को यहाँ बैठाए रखता है, पर रोहन को लगता था कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक रोहन घर आया तो देखा कि उसके बेडरूम में नौकर अपने दोस्तों के साथ बैठा है। यह देखते ही वो गुस्से से भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वो उसके पास आकर रहे, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर से बहू भी नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी, बेकार में मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अजय की बहनें जो भाभी के होने पर महीने में 2-3 बार चक्कर लगा जाती थीं, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। वो कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहां आकर भी खाना बनाओ ये बस में नहीं। भाभी थी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-4 दिन चैन से बिता लेते थे। रोहन उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था, लेकिन अकेलेपन और नीरसता के समुद्र में डुबकी लगाने के कारण वो खामोशी से उनकी बातें सुन लेता। उसका दिल रोने को होता। आभा ने कैसे कुशलता और प्यार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, तभी तो उसके जाने के बाद उसके अपनों ने ऐसा मुंह मोड़ा मानो वो आभा के रिश्तेदार हों। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई तो बहुत उदास होती हुई बोली, अब मन नहीं करता तेरे घर आने को, मेरी बात तुझे बुरी लग रही होगी, पर सच तो ये है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। आभा थी तो कितनी आवभगत करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वो नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे? साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाती है,

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है घरौंदा। अब तक आपने सुना रोहन के बिगड़ैल स्वभाव के कारण उसकी पत्नी आभा उसे छोड़कर चली गई थी और धीरे धीरे सब कुछ बिखरता जा रहा था। रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। कौन आता उसका उदास चेहरा और बिखरा हुआ घर देखने और संभालने। अब रोहन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब आगे पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, पर वो ऐसा संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। क्या कहता रोहन और कैसे रोकता उन्हें। उसे लगा कि बुआ सचमुच उसे आईना दिखा गई है। पिछले 6 महीनों में वो इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकड़ हवा हो गई थी। होटल का खाना खाते खाते वो तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। उसने ये सोचकर अपने दोस्त पीयूष को फोन किया कि आज रात का खाना उसके घर खा लेगा, पर उसने कहा यार मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें खुद फोन करके किसी दिन बुलाऊंगा। क्या करता रोहन, रेस्टोरेंट में ही गया। वहां देखा कि पीयूष अपने परिवार के साथ आया हुआ है। एक कसक सी उठी उसके मन में कि उसके दोस्त भी उसे घर नहीं बुलाना चाहते। पीयूष ने भी उसे देख लिया था इसलिए अगले दिन फोन करके उससे बोला, यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि अजय अकेला आकर क्या करेगा, उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आभा थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना जरा अखरता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वो पहले वाला रोहन तो रहा नहीं था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना ना मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में डेरा डालकर बैठ गई है। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लिवर पर असर हो गया था। अब हालत ये थी कि वो कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वो कराहने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की तरह जैसे हर चीज पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन पीयूष अपनी बीवी सहित उससे मिलने आया। उसकी बीवी चाय बनाने रसोई में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वो चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर रोहन को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। फुसफुसाते हुए वो पीयूष से बोली, यहां मैं एक और पल भी नहीं ठहर सकती, घर है या कूड़े का ढेर। अजय ने सुना तो मन महसूस कर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता, गलती तो उसी की थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है घरौंदा। अब तक आपने सुना, रोहन ने 2 साल की शादी में एक भी दिन अपनी पत्नी आभा को सुकून से घर में रहने नहीं दिया। हर बात पे शिकायत, हर बात पे गुस्सा। और एक दिन जब आभा उसे समझा रही थी कि उसे हर किसी से बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, तो उसने उल्टे आभा से ही बोल दिया कि वो भी चाहे तो घर छोड़कर जा सकती है। ये बात आभा के लिए बर्दाश्त के बाहर थी, वो चली गई। धीरे धीरे सब ने रोहन का साथ छोड़ दिया। रोहन को उसकी गलती का भारी एहसास था। अब बाहर का खाना खाने पीने और अस्त व्यस्त रहने से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। अब आगे आभा को कब उसने मान दिया था? हर समय उसे दुत्कारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे? एक वही थी जो हर ज्यादती को सहकर भी उसकी परवाह करती थी। हर काम उसे परफेक्ट ढंग से किया हुआ मिलता था, पर तब वो कमियां ढूंढता रहता था। उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नजर गई। आंखें अंदर धस गई थीं, दाढ़ी भड़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही थीं। पसीने से वो नहा उठा, सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसको मुंह चिढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देख डर के उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वो उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। ये पीलापन उसे धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसकी पोछल पलकों पर मानो पीली दीवारें कतरा कतरा उतर रही थीं। एक लंबी सांस लेकर उसने निर्णय लिया कि अपने हर झूठे अहम और गलत व्यवहार को एक किनारे रखकर वो अभी जाएगा और आभा का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी प्यारी आभा उसे एक मौका तो जरूर देगी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी घरौंदा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो,

आप लोगों ने ऐसे ही गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजी ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आप ये खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया। 1995 था जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजयपथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया, जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था, जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवा ही लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं